0: जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
0: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीएम अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आज की सभा में प्रसारित हो विवाह कार्यक्रम की रूपरेखा। से रूपरेखा को जानने से पहले आओ जानते हैं आज को दिन, तारीख व समय को। आज दिन है बुधवार को, तारीख है 17 जून 2026। ईवीएम अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:01। तो दोस्तों, जो अपन ने दिन तारीख समय को जाना है, आवे क्रम में जाने थे प्रसारित हो विवाह कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुने अपन भोर कार्यक्रम। भोर कार्यक्रम में सुने भक्ति भरे गीतन को। एक बार सुने पुनः प्रसारण कार्यक्रम शुभ कल हम होंगे कामयाब। कार्यक्रम स्त्री कहानी मेरी भी खेत खलियान विधा बुंदेली। दोस्तों, ये कार्यक्रम पूर्व प्रसाद कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम अपन 8 बजे से 10:30 बजे तक सुने हैं। 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने। आज की बात 11 बजे से 12 बजे तक सुने। बातें तो वहीं हमें 12 बजे से 1 बजे तक सुने। लोकरंग कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे तक सुने। शतरंगी कार्यक्रम 3 बजे से 3:30 बजे तक सुने। बुंदेली गीत बुंदेली गीतन को आनंद लें। 3:30 बजे से सुने शुभकल कार्यक्रम 4 बजे तक। 4 बजे से सुने हम होंगे कामयाब कार्यक्रम 4:30 बजे तक। 4:30 बजे से सुने अम्मा की चौकी से 5 बजे तक। 5 बजे से सुने खेत खलियान कार्यक्रम 5:30 बजे तक। 5:30 बजे से सुने विधा बुंदेली कार्यक्रम 6 बजे तक। दोस्तों, जी आज की सभा में प्रसारित हो विवाह कार्यक्रम की रूपरेखा थी। आज शुरू बात कर रहे थे कार्यक्रम भोर से। भोर कार्यक्रम में सुनते हैं भक्ति भरे गीत। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में।

ढोले तुम्हारी मैया ढोले तुम्हारी तो नए नित गीत सुनाऊं तोरे अंग।

0: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
1: बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष, कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
2: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
2: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा। चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम

0: बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यही बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारे जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन
3: जी,
2: जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है, इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटे, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, चूंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर,
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी,
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है, तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
3: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके स्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
3: बिल्कुल सर,
2: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी,
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है
3: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कटिया गेहूं बहुत अच्छा है,
3: बिल्कुल सर,
2: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे रोजगार के लिए
3: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती
3: जी,
2: उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या FIO होता है
3: जी,
2: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी, और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके की हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर?
2: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
3: जी।
2: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गाँव में लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गाँव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
3: जी।
2: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
3: जी,
2: उसमें चीजें हैं हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
3: जी,
2: दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
3: जी,
2: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
3: जी,
2: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है
3: जी,
2: वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
3: जी।
2: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है
3: जी।
2: जहां चाह वहां राह की बात है, बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
3: बिल्कुल सर,
2: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
3: बिल्कुल सही बात कही आपने। चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
2: कोई चीज बिकती कब है, जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
3: जी,
2: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
3: बिल्कुल सर।
2: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
3: बिल्कुल सर।
2: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती है।
3: बिल्कुल सर।
2: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
3: बिल्कुल।
2: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है
3: जी।
2: यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
3: बिल्कुल सर।
2: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते है
3: जी।
2: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है
3: जी।
2: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
3: जी।
2: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
3: जी।
2: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
3: जी।
2: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
3: जी
2: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
3: जी,
2: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
3: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपके क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
2: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
2: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप

0: आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है, और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं, और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: आपने और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है, यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है, तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तिगेला के पास ओछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
4: 9919207749।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मरीज को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही है गो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो है गो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हेंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनो ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा देंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर
0: रहा। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे ढाल के नीचे, राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं
1: हाँ,
0: के नीचे हाँ, रहते थे। आपके परिवार में कौन है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहनें थे, 3 बहनें थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो? तो
1: वहाँ पे तो चौका वाचन करते सब करते हो। ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती हुई और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहती
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी का, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेल में की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये यही खेल खेलते तो।
0: अच्छा,
1: चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा
1: साउंड को चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जो खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? खेलत में गीत ना, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं
1: आता?
0: पहले तो गाती नहीं आप?
1: अबे भूल गए, अब तो बड़ा को ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा को नहीं है आपको? लेकिन तो बड़ा को नहीं लगा था आपको?
1: नहीं, बड़ा को का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती
1: है? कौनो नहीं गाते हैं,
0: आप गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती है?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो, ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई
0: सब। मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, हम मिल जाते हैं,
0: मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते
1: हैं, कभी कभी इकट्ठे हो जाता है। खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहनों मिले तो अच्छा लगता
0: है। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे, मतलब पैर का कपड़ा कौन कौन से चलाते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते, और फिर आके पहनते, और फिर आके नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक्सेट ये पहन लेते, और हम तो मैं फिर आके दे रही तो ये पहन लेंगे, बस यही कह रहा हूँ।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भाई जाती,
0: तो मतलब कुछ तो अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते जब हमारी शादी हो गई थी,
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वो आपने देखो तो
1: है?
0: पहले से देखो तो
1: है? नहीं नहीं, पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: एक से तो आते ही हमारे बाप बताई 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन जिन को काम करते हमारी मताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका।
0: फिर
1: उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया पूर्ण मदाए थे।
0: अच्छा,
1: तो वही मताई नहीं थी, कई मैं
0: 500 रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे रहे, वैसे ही के बिटिया को पुण्य ब्याह हो रहा, पुण्य में दे दो पैसा, बड़े बड़े सेठ लोग।
0: जब आपकी ब्याह हुआ एक ही बात कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है राधापुर में ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप बो टीका।
0: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह होता
1: है? हाँ तीन दिन को होता है।
0: तो बारात तीन दिन मिली रही थी
1: नहीं एक दिन तीन दिन मिली रही थी बारात
0: तेल
1: नहीं आते टीका के दिन।
0: अच्छा
1: और फिर भावर मावर बारात टीके तो वो दिन थोड़ी जाती बारात दूसरे दिन
0: जाती तो जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी हमारा जयमाला नहीं डरी मैं तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्केट से अपन वो खोलियन हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट पर लाल बापो के लाइस।
0: अच्छा जो
1: सब
0: मड़वा
1: के खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मरा चढ़ो फिर
0: गाँव रहे कहाँ चढ़ो तो आपको
1: हाँ प्याज ना चढ़ी थी एक किलो के वो खंगवज्जा
0: एक किलो की प्याज ना
1: हाँ एक किलो के प्याज ना खंगवज्जा
0: बस
1: दो और जाइए तो पैरा ते पहने
0: थे बाजू बंद
1: हाँ दे चढ़े थे।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो अब रखे हो आप
1: हाँ भारी बियन की बात
0: अच्छा दे
1: छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ले।
0: अच्छा
1: कौन से हैं
0: सही बात है। अच्छा आपकी विदा कहाँ है भाई दी
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
0: था हाँ।
1: भाई में भाई थी पिता
0: उतर से इतने तक झांसी
1: नहीं उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी में आए थे। अच्छा इसके पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
1: हम ऐसे कबन बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
0: अच्छा बैलगाड़ी से झांसी से कैसा लगा तो आपको विदा हो रही आपकी और बैलगाड़ी से हो रही
1: बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हम अच्छी का।
0: अच्छा
1: पहले जाते खेलार तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना
1: अगर तुम्हें कारस देव में जाना तो गाड़ी से
0: जाना सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो इतने ससुराल में कुकु मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा आप कितने नंबर की
1: है दूसरे

0: नानी नौ दो
1: नंदन की शादी हुई।
0: हाँ।
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हाथी।
1: बड़ी हाथी। हाँ। अच्छा तो फिर आपके एटे का रस में वही मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार बना रहे थे फिर चले गए थे।
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
0: खिचड़ी बनाई थी।
1: आपने खुद बनाई थी?
0: नहीं बना पाई थी हमने जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा।
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा था।
0: हाँ।
1: तो आप ओरेंडर
0: द्वारे में ओरेंडर हुआ दे।
1: अच्छा ओरेंडर हुआ दे। तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो? तो
0: हमें नहीं कछु नहीं मिलो तो हमें तो पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: हुआ देने।
0: हाँ
1: उल्टा नहीं हुआ
0: पहले देता ही है तेल।
1: अच्छा।
0: अबे भी देता मोरन के।
1: हाँ।
0: जैसे खिचड़ी बनो तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा।
1: अच्छा।
0: चाहे दस दरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ लेकिन सास ले ओरेंडा तो ओरेन पे रखत बहु।
1: अच्छा।
0: तो बेबी सास ले।
1: अच्छा
0: जी की सास ना हो तो जेठानी में
1: तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास तो आपके समय में खुला
0: था? नहीं हमारे समय में नहीं खुला
1: जूड़ा नहीं खुला
0: नहीं।
1: अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खोलते जो
1: छोड़ा
0: जो छोड़ा
1: ना तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है
1: खोलता था ठीक
0: है खोलता था ठीक
1: है काम हाथ हो तो मतलब
0: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
1: नहीं तो
0: महत्व महत्व।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: छोटे आते समझते
1: नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपने ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिलकर
0: जेठानी के संग करते लड़ाई का
1: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी न सास से भाई कब
1: नहीं होती आप सीधी आती दो जने
0: एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने हो गए सब अलग अलग हो गए।
1: अच्छा और ये तो सासरी में का काम होती है खेती
0: होते खेती होते ही रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ होती रात से खेती होती से रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं?
0: चार बजे उठ जाते चार बजे से पी सकते पाँच छह किलो नाच पीस देते
1: पाँच छह किलो रोज पीसने।
0: हाँ रोज इतना जेठानी पी सकती
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो
0: चार बजे से भी पी सकती
1: संगे पी सकती
0: हूँ कबू संगे कबू अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम तो
0: गोबर मोबर डालते
1: कितनी गाय भैंसे होती
0: है आपकी? दस बारह गैया होती गोबर मोबर डालते झाड़ा झूड़ी करते फिर एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम हाँ, कर लेती
0: तो फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते
0: नहीं बैलन से
1: बैलन से चलते
0: घर में नहीं आती लोग
1: सब
0: वही चलाते रहते कब हम सात जैठा नहीं चलाती कब हम चलाते रहते
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपने कहो भी। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हमारा छह लड़का
1: छह लड़का और लड़की
0: लड़की नहीं है एक
1: लड़की नहीं है को तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: हाँ पढ़ाओ परेशानी होती सो कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: पाँच पाँच पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ सबकी हो गई सब सब नाती ना तुम लड़की हो गई।
1: अच्छा नाती इनकी भी हुई कितनी नाती है ये?
0: छह नाती है छह नातने हैं।
1: अच्छा तो
0: बिलाती को
1: मतलब बिलात बड़ो
0: परिवार है? हाँ तो छह लड़का है तो दो दो है सबके।
1: अच्छा, अच्छा
0: और एक के चार है बड़े के तीन मोड़ी है
1: तो एक मोड़ी
0: तो आप बिरोबर हो गई तीन ना ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा एक के छोटी एक के मोड़ा होगा एक के मंझले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको अच्छा लगा था त्योहार पे हुआ सब जने आ जाते हैं तो अच्छा लगा था ये ना। तो आप सुमाटा नहीं खेलती हो? कैसे खेलती आप अपने
0: सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेल
1: गाना गाते भूल नहीं आते याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही
0: हैं आप? 20 साल से ज्यादा हो गई।
1: जैसे आपने पढ़ाई पांच तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसे लग गई थी मतलब?
0: पहले इन्हें चार जनन के कागज दे थे घर के तो सब ने 200 रुपया में लगते तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे हमें नहीं करने हमें निकालना सुख है। बोली चाची तुम लगता हो अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकता है, तो 350 में लगते हमें 200 रुपए के।
1: धीरे धीरे करके
0: फिर हम इनके ससुर बोले लगता हम दे दे वो करें तो मैं 2-4 रुपए ली नाच खावे के लाने वजह का करा। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 रुपए ली नाच पानी भरे आते इनको, तो फिर लगे रहे इनके तो पानी तो अभी भी अब छोड़ दो हमने बना तो नहीं लगे। जब से हमने गाड़ी करी जब इसे पानी
1: भरा
0: खाए भी बेकी परेशानी से जैसा नहीं तो जो दे तो सकते खाओ नहीं करते तो को दे रहे
1: सही बात है
0: तो को ना करो।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला गिला के मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना नहीं 2,500
1: होगा
0: 350 है हमारे फिर 1500
1: तो फिर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव करो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने क्या सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी आंगनबाड़ी कर ली पैसे जाकर
1: नहीं आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
0: चौपे में तो महत्व देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए।
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ।
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही
0: है लेकिन पहले कहाँ मिला?
1: हाँ पहले नहीं मिला तो लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम पढ़ाए चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का के वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं
0: अपनी को तो सब हमारी सब 8-8 पढ़ी ना तो नाती पढ़े
1: तो पढ़ाए चाहिए।
0: हाँ सब पढ़ रहे को पढ़ रहा को बड़ी बड़ी हो गई सब 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो ब्याह पढ़ दो ना तो बन के
1: बहुत बढ़िया
0: को पढ़ दो अब दो नाती पढ़ रहे के।
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताओ ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अपना रेडियो अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है गो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है गो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है गो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है गो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचने लगा थेगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी

कर दो या फिर बड़े हो गए सर बुखो चौका बासन करने आए गो घर को काम ही देखने आए गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी, ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ये लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब दम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों हमारे किसान साथियों आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कई कई ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो जान बैठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया, आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दूवर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, शूंडिलासिता तथा उपता या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज है उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो हाँ, कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए मैम?
1: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें
0: जी
1: प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमलासिता, चूर्णलासिता, उत्तक या ग्लानि रोग।
0: जी
1: तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ।
0: जी मैम,
1: तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली

0: सुरमा, बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारक हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट है इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है, और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए। जी जी। और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ, और इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।
3: तो मामा को निभाएंगे

0: जहां तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल मैम, जी मैम।
0: में।
1: और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहां पर बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेटी झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए,
1: अच्छा
0: वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी तरह
1: बिल्कुल
0: से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम, तो
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी।
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: आप ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में, फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी
1: अच्छा
0: पैदावार को कम कर रहा है।
1: जी
0: और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है।

0: की खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: तो हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे,
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है।
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम,
0: जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो है वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी भूल जाएंगे।
1: कहीं
0: तो
1: ना कहीं
0: इसका जो
1: मैम
0: है,
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी मैम,
0: जी विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात कही
0: हो
1: है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा
0: करें।
1: विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: क्योंकि
1: समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे,
1: जी
0: जी, जब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्ती से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहां ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो
1: जी मैम,
0: अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा, तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा।

0: और हम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, बिल्कुल
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा को मिला नहीं जा रहा
1: जी मैम,
0: था, लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
1: जी मैम। इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम,
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम,
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे
1: जी मैम,
0: हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद,
1: चलिए,
0: उन्होंने
1: थैंक यू।
0: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए, थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

ना, फिर उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब

0: क्या हुआ मैंने अगर इश्क का इजहार किया आपसे प्यार किया
1: आपने

0: फिर दिल का गुनहगार किया, हाय क्यों प्यार किया। क्या हुआ मैंने अगर इश्क का इजहार किया, आपसे प्यार किया,
1: आपने क्यों

0: का दुश्मन हाय हाय
1: हाय हाय,
0: कैया बल्ली प्यार का दुश्मन
1: हाय हाय,
0: मेरी जान का दुश्मन हाय।

छोड़े ये बल्ले ना दे मेरी सलमा को मेरी दुल्हन सैयो बल्ली प्यार का दुश्मन हाय हाय मेरी जान का।

0: देखो,
1: अरे
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मुर्के।

0: हाँ चेहरा किसी का खिलता है, हमको है मालूम किसी से किसी से किसी से छुप कर ये भी मिलता है। मैं नाम बताऊं
1: ना ना ना ना जी,
0: तस्वीर बताऊं
1: ना जी ना जी ना जी,
0: सर गया वो कैसे बाजार में ऐसे, शरीफों को हम रुसवा नहीं करते मियां जी, मन सैया बलि प्यार का दुश्मन, हाय हाय मेरी जान का।

0: नमस्कार।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
2: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
1: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद हैं आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा
2: और साथ में है मनीष।
1: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुनी रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
2: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
2: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी

0: का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं, तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों, ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने, या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको, या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए, उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
0: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए।
1: तो हम चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, वो किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा हैं और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो है एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने को मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है, जो किचन से पानी निकलता है जी। और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उसे उगा सकते हैं जी। और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है, तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कि हमने एक पोसा ड्रम हेड एक वैरायटी है पत्ता गोभी की, उसी पे हमारा रिसर्च चल रहा है जी। तो उस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। तो हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है मिलकर खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद में को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उम्दा होगा, बहुत अच्छा होगा
0: जी।
1: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
0: जी।
1: और लहसुन है
0: जी।
1: इन सब की खेती करके हम लोग ये मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
0: जी।
1: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो हम छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में जबड़े खेतों को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
0: जी जी।
1: तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध हैं यहाँ पे
0: जी।
1: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे।
0: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है
1: जी। जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ मतलब ये मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो है मतलब जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय इनमें कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने की वजह से हमें, अभी देखो हमारा किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसे उसने धान लगाया 6 महीने बाद आया धान, अलग यहाँ नहीं होता है फिर भी
0: जी।
1: जैसे गेहूं है तो टाइम टेकिंग है, गन्ना है वो टाइम टेकिंग होता है
0: जी।
1: इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कृषण क्रियाएं होती हैं वो नहीं करनी पड़ती, निराई बुड़ाई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि शाकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इनको समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए। जब भी लगता है कि फ्लावरिंग हो रही है फ्लोटिंग हो रही है तो पानी देते रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसा कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के जो है लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जी का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि हम लोग जो है जिनकी डिमांड कम है क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पे, इसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केटों में बिक भी जाता है
0: जी, जी,
1: और जो हमारे बड़े किसान हैं वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंस मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली मैं देखता हूँ कि चना बहुत जाता है दिल्ली हरा चना
0: जी,
1: तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए क्योंकि चने का साग बनता है।
0: बिल्कुल सर बिल्कुल।
1: तो आप ये यहाँ से चना उगा के यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है।
0: यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
1: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाए उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद मतलब उसमें दे रहे हैं तो वो भी उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय ही हम उसमें जो है खाद डालते हैं देसी खाद, और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया। हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो जो भी इरिगेशन सिस्टम हो उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर्स जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिराया लेकिन पहली बार 4 सालों में 5 सालों में बहुत कम पानी तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
0: जी।
1: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियों को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली हो, जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है, जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं, लेकिन जो साखी जो पालक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए। तो हमें ऐसी सब्जियों को ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
0: जी, जी।
1: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
0: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर को पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितने हम केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा और हमारे सभी जो जितने भी युवा हैं सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आए, इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं। तो ये कि हमारे कृषि का ये भविष्य है और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाइए ही, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम जो मतलब जो सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर।

0: फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यावसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खाद की सब्जियां जो हम खाते हैं

0: उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
0: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी सी छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
1: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
1: साथ ही हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
0: 9425147126।
1: दोस्तों अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज, चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे। चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए,

0: भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं, उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है, यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1,706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे।

0: साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी चूंकि खेती किसान जुड़ी योजना है इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी है। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है।

0: जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी। और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं? वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी आप जान लीजिएगा।
1: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
0: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरसेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी FPO के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन के जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहां पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के

0: ये इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाय OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI वर्क फ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425-14-17-26।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: नमस्कार।

साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनैबे बारे हमारे सब साथियों को, सब हमारी प्यारी प्यारी सी बहनन को बरसा बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंचावे। साथियों देखो, आप तो जानते ही होगे कि ई वक्त और आज के दिना खास तौर से हम आप सबके लाने लेके आउथेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ सखियो, और अम्मा के चौके में अपन और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बनावे की विधि को सीखेंगे। देखो खाना बनावो तो बहुत सरल बात हैगी और हमारी सब बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन खाना बनावे के संगे कौन कौन सी बातन को ध्यान रखें जज्जी अपन को, या फिर मान लो अपन को कोनो नई चीज सीखने हैगी तो कैसे सीखें, तो भैया रेडियो बुंदेलखंड एक बढ़िया माध्यम है वो अपनो, और इमें जो हम आपको विधि बताऊ थे या जो सखियन से बातचीत कर देंगे, सो उनकी बातें सुन के और आप अपने खाना पे जो है और स्वादिष्ट चार चांद लगा सकती होंगी, है ना? आपको देखो खाना पे भी चार चांद लगा लगे। तो सखियों देखो, आज हम आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके में लेके आए हैंगे सोयाबीन चिली बनावे की आसान सी विधि। अब आप सब जने सोच रहे हो के जो सोयाबीन की बरी खाई थी और सोयाबीन आलूवन में बना के खाओ, तो जो सोयाबीन चिली बनावे की विधि कैसे हुज्जे? बिल्कुल आपके मन में जो सवाल खटक रहे हो, हम आपको उनको समाधान भी बता रहे हैं, कहे की पूरी विधि और काका सामग्री में लगने हैं वह हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो बने रहो हमारे संगे और सुनो जो कार्यक्रम। सो आओ अपन सीखत हैंगे सोयाबीन चिली कैसे बनाऊ थेंगे, इके बारे में कछु खास बात रखो।

चिली एक ऐसी डिश हैगी साथियों जो सभी जने पसंद करत हैंगे, सबको पसंद जा आ जाऊ थेगी। काहे कि स्पाइसी खावे वाले लोग इसको ज्यादा पसंद करे थे, यानी कि जो तेज तर्राट खावो यानी ज्यादा मिर्ची वालों खाना खाऊ थे उनको भी जो ज्यादा पसंद आऊ थे वो।

0: चिली पौष्टिक चीजन से भरपूर होते हैगी। काहे कि इमें हम बहुत सी सब्जियन को भी इस्तेमाल करते हैंगे। देखो साथियों, जब अपन नॉर्मल सी सोयाबीन की बरी बना उठेंगे तो अपन क्या करते हैं कि या तो गला के सिर्फ सोयाबीन अकेले बना ले उठे, या फिर एक नौ तरीका और है कि अपन और जो है चावलन में बना ले उठेंगे है, या फिर एक और जो है कि आलूअन में मिला के बना लेते हैं। लेकिन जो अपन सोयाबीन चिली बनावे वाए हैं, इनमें क्या करना है अपन को कि बहुत सारी सब्जियन को भी मिक्स करने है। सूजी में कहा हुई है कि पौष्टिक चीजें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पेगी। तो इमें आप सबको बता देवे के रोटी चावल या फिर आप ही खो ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि बिना रोटी चावल के भी आप खा सकते हैं खूब मजे लेके। सोयाबीन चिली खो आप 15 से 20 मिनट में भी बना सकते हैंगे, और आप चाहो तो ये खो रसादार भी बना सकते हैंगे, मतलब ज्यादा रसा नहीं, गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम सी बना सकते हैंगे, या फिर सूखी आप बनावो चाहो तो सूखी भी खो बना सकते हैंगे। तो चलो साथी, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैंगे कि सोयाबीन चिली बन रही सोयाबीन चिली, लेकिन कैसा बनाना जो तो अपन को सीख नहीं आया ना। तो चलो अपन देख देंगे कि सोयाबीन चिली बनत कैसी हैगी, और इको बनावे के लाने सबसे पहले जो सवाल अपने मन में आउट है वो जो ही है वो के सोयाबीन की सामग्री का हो जे, यानी सोयाबीन चिली बनावे के लाने सामान अपन और उनको का चाहने उनके बारे में एक नजर एक लिस्ट अपन और बना ले उठे, ठीक है। तो बहनों, लिस्ट बनावे के लाने आप का करो, एक कापी और पेन उठा लो जल्दी से। का होती के कबू कबू अपन और अब पहले आप पेन उठा लो, फिर हम बाद में बताएंगे, ठीक है। सो का होते हम का कह रहे थे कि अपन और का करती कि चीजन को ध्यान तो रख लेते ही, लेकिन जब बना भी खिलाने बैठत ना सो चीजें आधी से ज्यादा दिमाग से बाहर निकल जाती। काहे कि अपने दिमाग में और बिला सारी जिम्मेदारी रहती, बहुत चीजें इताएंगी उताएंगी, सब सोचने आता अपन को है कि नहीं। सो ये सब कौन चीज अपन भूल ना जावे, सो पेन कापी अपन उठा के और उमे नोट कर ले, ठीक है। तो अब उठा लिया अपने पेन कापी, चलो तो अपन शुरुआत कर रहे थे सामग्री का अपन को चाने हैगी। तो सामग्री में सबसे पहले देखो, सोयाबीन की बरी अपन को लेने हैंगी 500 ग्राम, प्याज अपन को एक ले लेने हैं, हरी मिर्च में चार ले लेवे, और शिमला मिर्च अच्छी खासी आउट हैगी सो एक से दो फीस शिमला मिर्च की ले लेवे। हरी प्याज अगर मिल जावे आपको तो एक से दो जो है हरी प्याज आप ले सकते हैंगी। गाजर इमें अगर आपको मिल जावे तो गाजर भी आप एक ले सकते हैं। तेल की अगर बात करें तो देखो साथियों, आप जाना थोगे कि तेल जो है वो अपने अनुसार डालना चाहिए, क्या कि कछु जने ज्यादा खाऊते और कछु जने कम खाऊतेंगे। सो अपन को ध्यान रखने है वो कि तेल अपने हिसाब से यानी 100 ग्राम आप ले लेवे। जीरा ई में जरूर डाल लेवे एक चम्मच, लहसुन अदरक को पेस्ट भी अपन को दो चम्मच ई में ले लेने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक को दो मिला के पेस्ट बना के दो चम्मच हो जावे ठीक अपन को लेने हैं, ठीक है। काली मिर्च भी अपन को लेने हैगी एक से दो चम्मच, और मक्का को आटा आपने सबके घर में मिल जाऊ थे वो, मतलब बहुत कम मिला थे वो, अब तो पहले बहुत जल्दी मिल जाऊ तो मक्का को आटा ही में केवल अपन को दो चम्मच चाने हैं। नमक जो है वो स्वाद अनुसार चाने हैं। देखो अब कहे कि नमक की अगर बात हम आपको बता दें तो बात गलत हो जाएगी, आप एक चम्मच डाल लो या दो चम्मच, और ज्यादा हो जाए या कम रह जाए सो आप हमें खो उल्टी बातें सुनाओ है। सो इसे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आगे एक और चीजन कछु चीजन के हम नाम बता रहे हैं जो आपको मिल जावे तो ठीक है, और नहीं मिलवे तो आप बिना ई के भी बना सकते हैं। जैसे कि सोया सॉस दो चम्मच चाने हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ई के बिना भी बन जाए। मिर्ची सॉस जो तो मिल जाए आसानी से, सीखो तीन चम्मच डाल लीजियो। अब विनेगर चाने हैं अपन को सो दो चम्मच जो चाने और नहीं मिले तो ई के बिना भी चल जाए। धनिया पत्ता तो देखो मिल जाए और ई के बिना ना चले, लेकिन ठीक है सो धनिया पत्ता ले लो। अब जा तो हो गई सामग्री के अपन को सामग्री का चाने हती, अब अपन बात कर लेवे कि अपन को विधि यानी के बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही में जो करने हैं, अब काहे के बिला देर हो गई बातें करत कर सो हम मन कर रहा हूँ कि कहना है देख छोटो सो कछु सुन लेवे अपन, और फिर सुनने के बाद फिर अपन विधि जान लेंगे, ठीक है। तो अपन तो एक बढ़िया सो लोकगीत को सुनत हैंगे, और लोकगीत सुनने के बाद फिर से कार्यक्रम में लौट के आ रहे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संग, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौकी से।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
2: गुटका छोड़ो सैया रे हा, ए गुटका छोड़ो सैया।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: अपनो रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। साथियों देखो अभी आप सुन रहे थे ई नौने से लोकगीत को, जिखो गा रहे थे काशीराम और उनके साथी। अब अपन बात कर लेवे के अम्मा के चौके में जो विधि की अपन बात कर रहे थे कि विधि कैसी हैगी चिल्ली सोयाबीन बनावेगी, सो अपन उखो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करने हैं वो कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल लेवे और सोयाबीन की जो बरी अपन ने लई हैंगी उखो डाल के 2 मिनट तक उबाल लेवे, और उबलवे के बाद फिर उखो ठंडो होवे के लाने छोड़ देवे अपन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जब उबल गई सो अपन एकाएक जल्दबाजी में जब रखेंगे सो गरम गरम उन्हें पानी में से निकाल लो, ऐसा नहीं करना। ठंडो होने देवे पहले, फिर उसके बाद उन्हें पानी में से निकालवे। तब तक अपन का कर लेवे कि अब अपन प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेवे, और इनको काटवे समय आपको ध्यान रखने हैं कि जो गाजर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपने चीजें ली हैं इनको पहले धो लेवे अच्छी तरह से। कहा होती है कि जल्दबाजी में अपन इन चीजन पे ध्यान तना कम दे पाउंगे, सो आप अच्छी तरह से इन्हें छील लेवे और धोने तो आपको जरूरी है। अब क्या करवे कि जब तक अपनी सोयाबीन जो है बा अच्छी तरह से ठंडी हो गई हुच्चे, सो सोयाबीन को पानी निकाल लेवे यानी को उखो निचोड़ लेवे। आगे अपन बता चलवे कि इमें अभी में साथियों अपन को क्या करने है गो के अंडा, सोया सॉस, टोमेटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट और मक्का को आटा जो है और थोड़ा सो नमक डाल के इखो अच्छी तरह से मिला लेवे। एक बार फिर से सुन लेवे, अंडा यानी अंडा हो फोड़ लेवे, सोया सॉस, टमाटो सॉस, काली मिर्च, अदरक लहसुन को पेस्ट, मक्का को आटा और थोड़ा सो नमक डाल के इखो अच्छी तरीका से मिला लेवे। फिर इखो तेल में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेवे, और सावधानी से करने हैं बहनों आपको फ्राई। काहे कि देखो फ्राई करत में भी कई सारी ऐसी अचूक अपन से हो जाऊ थेगी जो अपन को का कहते घटना भी लग जाऊ थेगी। जैसे जल्दबाजी में अगर अपन फ्राई कर रहेंगे तो तेल जो है हाथन पे उचक जाऊ थे गो, जिससे अपन जल जाऊ थेगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने है गो, आपको ध्यान रखने हैं कि सावधानी से अपन को जो है इन्हें तलने है गो। फिर का करवे कि गैस पे एक करज्जा को चढ़ावे और उमे तेल और जीरा डाल लेवे, यानी कि अब अपन बनावे की बारी आ गई। सो करैया में तनक सो तेल डाल लेवे और फिर उमे जीरा डाल देवे। जीरा डालने के बाद अपन को क्या करने है वो कि प्याज और गाजर को डाल देवे, तनक देर तक उखो भूंजत रहे। भूंजबे के बाद जब प्याज भून जावे तो उको कलर जो है सुनहरे कलर को हो जाएगो, फिर उमें शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तनक देर तक और भूंज लेवे। फिर इमें सोया सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर डाल देवे। इसके बाद सोयाबीन जो अपन ने निचोड़ के रखी हती उखो अलग से फ्राई कर लेवे, और फ्राई करवे के बाद थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीका से मिला लेवे। सब चीजन को अच्छी तरह से मिला लेवे और ऊपर से ढक्कन लगा के इखो कम से कम 2 मिनट तक आपको पकाने है गो, जिसे अपनी जो सोया चिली है वह अच्छी तरह से बन के तैयार हो जावे। और 2 मिनट से आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, कोनो बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह से चीजें पक जावे। फिर इसके बाद आप जब ढक्कन खोलो इको तो अच्छी तरह से धनिया पत्ती धो के और इमें डाल देवे और गैस को बंद कर देवे। जब अपन परोसवी की बारी साथियों आतेगी तो बढ़िया सो धनिया ऊपर से अपन डाल के और सोयाबीन चिली को अच्छी तरीका से परोसें तो बड़ी स्वादिष्ट और खुशबू ईगी, देखो तो बढ़िया सी आउट हैगी। अब साथियों जा तो अपन ने जानी कि सोया चिली कैसी बनत है, इकी विधि अपन ने जानी, इको काका चाने हाँ तो बनावे के लाने वो सब जान लो है अपन ने। आगे कछु सुझाव भी इके लाने हैंगे, सो आप भी ध्यान से सुन लो। सोयाबीन को गरम पानी में डाल के फुला लेवे। अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाउ थेंगे तो टटोलत टाइम सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सूखत है गो, और टेस्ट भी इको अच्छो होते है गो। सोयाबीन को छानत समय तेल गरम यानी के तलत समय तेल गरम होवो चज्जे और आंच धीमी।

होनी चाहिए। आप चाहें तो आप अपनी पसंद को भी सब्जी ई में डाल सकते हैं, यानी कि आपकी जो पसंद की सब्जी हैगी वह भी ई में डाल सकते हैं और इको और स्वादिष्ट आप बना सकते हैं। तो साथियों, जातो हती हमारी आज की रेसिपी, और हमें पूरा पूरा विश्वास है वो कि आपको जो रेसिपी जरूर जरूर जरूर पसंद आई हुई। और साथियों, अगर आपको ई के बारे में कछु और पूछने हैं गो, या फिर ऐसी ही आपको और भी रेसिपी हमसे पूछने हैंगी, तो भी आप हमें जरूर फोन के माध्यम से बता सकते हैंगे, और या फिर हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैंगे। जी के लाने अपना पतो है गो, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। जो अपनो पतो है गो, जी पे अपने सब साथी भैया चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन को संदेश लिख सकते हैं। सुबह जरूर हमसे जुड़वे और अपनी बात को जरूर रखवे। साथियों, आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके से अब हमारा जाबे को समय हो रहा है गो, और चलत चलत हम आपको सुनवात हैंगे बढ़िया सी गजल को। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबे की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें, और सावधानी पूर्वक से खाना बनाए अपन। हमेशा ध्यान रखें कि किचन में जो है बाल बच्चन को संगे ना ले जावे, काहे कि किचन में ऐसी बहुत सी नुकीली चीजें होती जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है गो। तो अब हम चलते हैंगे, और जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हुई है। तब तक के लाने नमस्कार।

0: उनके आप चालू होने से पूरे भारत देश में भ्रमण कर रहे हैं हम
1: जी।
0: नहीं तो पहले आपने कहा हम पहले नजियाबाद लगाते शुरू में, उन्होंने बोले कि आपको सुनाई देता है क्या?
1: हाँ।
0: तो हमको सुनाई नहीं देता, फिर आप बिल्कुल लगा रहे बोले। आज वही वही स्थिति नहीं है
1: जी।
0: कि हर जगह का रेडियो सुन सकते हैं अपन।
1: हाँ हाँ तो अलग और ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस आपको
0: पूरे पूरे पूरे सुन सकते हैं। और आकाशवाणी माध्यम ऐसी एक चीज है, ज्ञान वर्धक केंद्र है, और कुछ किसान के बारे में भी, किसान वाणी खेत के बारे में फायदा होता है।
1: अच्छा।
0: कोई डॉक्टर के प्रोग्राम होते हैं उससे भी कोई मरीजों को फायदा होता है सर।
1: क्या बात है, वाह। एक चीज और थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया है, आपका क्या मानना है इसके बारे में? थोड़े उन लोगों को मुंह पे तमाचा होगा जो लोग कहते हैं कि रेडियो का जमाना तो चला गया है।
0: रेडियो का जमाना कभी जाएंगे ना कुछ ना होगा सर, रेडियो तो चलता रहेगा
1: जी।
0: सिर्फ आदमी है जो बदलता जाएंगे, आदमी बोलता है मगर चलता है, मगर रेडियो ही चलता है कि रेडियो बदलेगा नहीं चलेगा। अभी रेडियो के श्रोता और बढ़ रहे हैं
1: जी जी जी। अब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन रेडियो के श्रोता अब बढ़ते चले जा रहे हैं।
0: हाँ, हमारे महाराष्ट्र में तो एक दो स्टेशन प्राउड चालू हो गए अभी
1: जी जी,
0: एक के पीछे एक ही जगह।
1: अच्छा।
0: तो क्योंकि रेडियो माध्यम के लोग सुन रहे हैं
1: जी जी,
0: और सुनने से वो रेडियो स्टेशन खुल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर मैं सुना तो नहीं खुलते थे सर।
1: बिल्कुल सर। और रेडियो बुंदेलखंड पर आप अभी फोन लगा, आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम इसके?
0: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि हम फोन लगाए सर, और बुंदेलखंड हम सुनते रहते हैं कि आपके जो पुनील कार्यक्रम है
1: जी।
0: और दूसरे भी कार्यक्रम बहुत अच्छे रहते हैं।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज
0: सर? बेटा

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों हमारे किसान साथियों आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो जान पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवक जनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उपता, यह जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस

0: ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के 1 माह बाद ही हो जाता है। और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदुभूमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू और ये फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए और उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं। तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गी की बात करें तो कद्दू वर्गी की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए मैम?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको 3 बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उक्त या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं,

0: 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है, इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालेक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है, और जो आपके मेडिसिनल प्लांट है, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है, और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: जी।
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी मैडम,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं क्षेत्र
1: बिल्कुल मैडम, जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का

0: उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: थैंक यू साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

विधा बुंदेली नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनाते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गांव में क्या ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलानी की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे, तो बहुत ही तक जा रही से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथ में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखने हैं आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखते हैं तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज यही क्रम में अपन सुने विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते हैं प्यारी सी नौटंकी को जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: ज्ञान के घाती बने हैं।
1: हाँ लाला, जितना ही भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है।
0: यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ
2: तो सुनो भाभी,
0: अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

0: लाला जी, आप तो भोजन मत करिए।
1: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं तो ऐसा नहीं है, मेरे संग में मरेंगे तुम भाभी अभी तो जगत में।

0: ब्रह्मचारी पुरख सब उसी को बनारी।
1: महाराज किसकी बहकाने में आप आ गए, ऐसा न मत कहिए महाराज।
2: अच्छा चंपा सुनिए, मैं जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी लाकर देता हूँ और सारे भोजन में चाय मिला दूँ और हजलों को खिला देना।
1: नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं करिए महाराज, नहीं। वाली जा, मेरे लाला हरदोल को बुला के ला।
3: जाती हूँ लाला जी। चलिए, तुम्हारी भाभी ने याद किया है।

ऐसी होगी।

0: जान के घाती बने हैं।
1: भोजन बनवाया है लाला जी, सब में जहर मिलवाया है बाप।
0: यानी हमारे भाई साहब ने।
1: हाँ।
2: तो सुनो भाभी,
0: अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी, अगर मेरी जिंदगी मिली तो माँ भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे तुम जैसी माँ मिले।

0: अभी
1: अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, मैं परोस देती हूँ, लेकिन परोसने में मेरा दिल थर्रा रहा है। लाला जी, आप तो भोजन मत करिए।
2: सुनिए भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में अपने प्राणों निछावर कर दूं। नहीं तो ऐसा नहीं है, मेरे संग में मरेंगे तुम भाभी, अभी तो जगत में जचेगी ये सांसें सही। सारी दुनिया कहे फंसी देवर के संग, बात भाई की।